0: 那时候给那么你刚开始
1: 刚开始
0: 热了前那么你我做全部定期的
1: 热
0: 了前可以定期肯定有了
2: 定期三度香
0: 三度香的切切了
2: 男生
0: 那时候定期没得男生怎么得这么多观众没
1: 观众去地上了吗
2: 观众去地
1: 上做得到的
0: 做得到给切了
1: 那吃多年吃多
0: 吃多年
1: 吃多五百个没露出彻底的
0: 露出彻底啊这里啊你看电动用的都到达电器看看你看家庭不及东西的在当一个坚持节奏啊他妈妈忙出个那些是比错的坚持节奏学那些他坚持节写上去了他的前那么给他电动的人族性可以给给接了你坚持节写了也他这些对咱们电器看你看的他露孙就这些啊路上就坦白个，几天你们也塞到，但是着急不急哟。等人家做个，但一下周同的人呐，今年一年半月吧，你呢等了个一七多月吧，但是这周一呐，周天月吧，等着就行噻。今年年个国际都做了点呐，下周也没差些啥的。
1: 但俺做下周开吧，就嘛的，俺个全部弄办了，他周，也没动脚的，他全部周，强度周，慢看周。那就做卡萨，卡做东，他家里在家里进的东，他特别多呢。啊，
0: 那是。
2: 他那样，他这就是做药剂咯。
0: 对
2: 了，药剂里上他那个我说个，主要做看的，他吃，他这，
0: 哦是。
2: 马店里头我说个，全部那做，没好吃的这个，做他全部个楼主做这里那这个吃，他那墙都做些子，马家朋友这些楼主都做这个吃。
0: 是。
2: 他那大楼主要做这个，他那。
1: 对
0: 其实城内路村就拉水，也就嘛总是生意噻，下周的。
1: 下周真的落的是好多。
0: 给钱了，对
2: 呢。我听听，确实是。
0: 一下周那呢，他去找宁波有的过，对那个找有的过，对那呢，跟着了干去。
2: 他去对那是没嘛找的，干去了那是。嗯，
0: 这呢。
2: 我嘛怕有找的，就是当地等于怕有先把的去，才考虑呢。怕有我嘛找，人家有咯，他这个上山的呢。做这个先把心里过那都，
0: 可
2: 能做看看忙干做，今天那抢着做没去当这个这一个，他马上搞做看你出去当这当，他这能干。
0: 前那么人那忙去的拉萨了，那就有办人呐。
2: 我
1: 的拉萨没事。
0: 这对对，那俺做个中间路空拉萨吧了，他就做个初八的人多啊，等等能差不着嘞。
2: 那看不着嘞，看
1: 着
2: 嘞，
1: 看着
0: 嘞，着急了，
2: 着急了，看。
0: 大把人从家路过，家等着吃。忙做个鸡，忙不鸡，吃匆匆一鸡大用的怎么？鸡肉咯，鸡零碎钱不着，包包钱不着，
2: 怕一包鸡包呢噻。
0: 怕一包对没得了，怕就站着些，都送着上山
2: 去。大大对，都是大。
0: 这起码那穿的干些嘞。
2: 从家路过穿的老脏，个就是棉了。
0: 哦，
2: 都是嘞。
0: 这前那么一那男主当俺做个零卡拉苏巴拉吃不嘛，菜别他都跟他跟他差不着嘞。
2: 大妈种草子呢，拉萨大妈种草子呢，但你在这就一种人的那背身背身种呢。
0: 啊，是是是。嗯，是，他种这些叔叔们那些呢，牵着着人，再加上俺这些呢，当俺陪强多日过来，所以呢，强多个赚钱的就热乎的，强多赚钱时呢，叔叔陪这样的，叔叔陪真的做的爸妈真就的啊，等这的叔叔亲舅个也擦擦洗洗个。他家的一种，全球个些都个来个的一，他等这是那做亲生的叔叔培养着，等这个村大那个经营的，前阵个那些呢，做的到前年个八公里啊的经营。
1: 等俺说培养着干起来着，培养着的，弄那老木的呢，培养着动养着，那些老兄弟帮忙的，就是那个养动种种，他那轻松的出不回，根本就不弄用。他但是第一这样的，一下子动根本就不回事，他第一次这样的根本。前年那个做几年的，八月个种，
2: 种的个许，先把几许子再种。
0: 对了，开业时呢，种都没没得新鲜切的些多。
2: 好了是。
0: 养开业个时呢，得人家嘛的，可是得这南岭的人是哪路过了？得得会讲，我一般来讲，全都得切的些多，真的赢了，肯定赢
2: 了。俺那吃着土里面多，他种的个许吧，个许呢个许一家种的人多，先把几许子呢，再查那啥子呢，那个了，他们偏好是的。
0: Zubur.
2: Oh, then he shot on the tetra chats and then my pioneer. bakona nga jodo nong da pam do raka kana sona sha do mo tan yutum bakona nga san tal po kali mati nyua jinga nga rosel mati ji sin himando
0: ha te re
2: ha tane sha do ta ji sal ji na yo tsan ta kom bakona nong da mando
0: ha la su po ta jonda che
2: lo po jonda ta tsan leka kari ni na kali ti mando
0: re
2: ta kol
0: pin tu sha do te che ne so ju gri ni jun ji shela ro ko ni ni dena mo ta ge da che cho ala gali chimbu che yo ma ko hyuli mambu che se ge ma ru ko la
2: de
0: na ye kya do ti ji zo bu jong da la pen chimbu to kyo sa
2: pen chimbu
1: pen to bu chho da nga ra na cha kan to da tro yin ta tro du ji cha kan pe man de lo bo de ge yong ha jo ge de bo ga mu chi bo yong da se ba chi bo na ja pa te sem sem chi em chi bo tro da ha jo ge pin do chi bo da
0: la so da ri chi ge ting chi ro a ka lin kha te na la ye kya do da तो जने ने को जी रेउ जे रे आ दे कंडी जे टडे से यो ना स जिंदे छिंदे टडे से
1: तंगा सु ता चुंबो क्लिन का नि टो चोंग गि पायु गि टो तने चाम दि टो ने मान काम टो कचे कसा कन टडे यो तने मान सो करे गाव न ते टडे ती दोन त नोवा चेबु वि ता टो त्रु टडे बो
0: चांदो इन टो छि रे को जे तिंग छि के इन चुंबो ग या ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱮ ᱨᱚᱜᱚᱞᱟ
1: ᱡᱮᱫᱚ
0: ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮ ᱪᱮᱠᱚᱝ ᱮᱱᱮ ᱦᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱝᱜᱟ
1: ᱪᱮᱛᱟ ᱡᱤᱥᱮ ᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱱᱮ ᱪᱤᱡᱮᱢ ᱪᱮᱫᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱫᱟᱨᱤ
0: ᱪᱤᱱᱫᱩ ᱠᱩᱞᱚᱞᱟ
2: ᱛᱟ ᱪᱮᱵᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱡᱤᱛᱚᱨᱮ ᱥᱱᱮᱭ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱚ ᱦᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱦᱤᱛᱩ ᱛᱮ ᱥᱨᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱥᱤ ᱫᱚᱢ ᱠᱤ ᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱴᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩᱥᱩ ᱪᱤᱵᱟᱨᱮ ᱫᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱥᱤᱱ ᱨᱟᱥᱤ ᱢᱩᱱᱫᱩ ᱨᱮ
0: chenye dalik linga te ge hyadro ka ta zo ngi khung khire se ra de ne chigi ka tade chende sile nyaw ka zo tade sile
1: ta linga tung wi ngi le nyma disa se tade ve to ro disa jon le cheta mo yo to cheta shin ri ta na ho ta de se ve to tade ma ve na ho ta lo chi ar te chan so ma ki ji le do na ho te zo wi to ya jon ta so ma ke ho zo wi te na to jon ta na linga ga che bo do chi de te to jon ni तो माजा गसु फायुला छुमा तो दों गबचबु उरी गसु फायुला तो तो दुंदि ततहाता गु फायुला तो दुंदि तुशी छेशुरी ततिंगछि के गुंको कना छेन ननान रोर गसु फायु न जागा मोबोले जागा आं तोंबु थुरिसबा थुरि कासा कने जागा आं तोंबु थुरतिंता ति जुजि द हाजु याबो रे तालो छेजो मे बा तो दोजि हाजु गबो रे ते तो दों जी तों तता छ सौ गत त लो छेजो मबा छुमा कबो चबो तातरि लंकातुर आयुला तुर लंकातुर रोजी तेनरा दुंजोरि
0: जे
1: टोन्युफा दुरि सर्वा दुरि तनाता तारि टारा थोन त कासा कन तो दुंजि द मोहो चत हिचरा छ तुदों त कासा कन तो छ दों ते गमो चबो तुरि जंदुरि
0: जे दा छेन र येना देदि थो तंबो ग दा सोसो ग जेंचा दे जे योर को देदि गो जों ने ता पा तो ग रोजी दों दे दा जेंचा येना जा क्विजी येना जा यो मना कते योर को ला tene yang an zuge ji dagan se re ten rek thoni jidu chen re shon so
1: ta te nga che de tai pa le che so so ya je che mu sur de go la go do de ti che dan ya zo ja ja ja mi tho si te kong ma ta ma se yo ma so a ju ta ta ha ju ye bo ri ta nan go ba ya ko le le me chen gu ko ta ma ko ba re no la ko ba re na bu ko ha kong ko ko ta tri ji de de jincha tge tre lo dara mecha tane kesa dami ten ten di gabu chebu zori ta
0: ginche ngane ki nang hma do ta so nyen bala dro cha du cheba cheshe de chenga
2: cheba chi chi jin na te mundo cha ta daron ke tu chwa ga chi nan tane cha ko za za gan sen ji mundo
0: je
2: la ga wa chi bo tro cha ta ka sa zon cha la ga ma jin man ro tane yo mi ke zon cha la ga ta pa ro te ge ya ka sa kan ren da se sa tro te gen ro ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱵᱚᱱᱫᱩ
0: ᱟᱥ ᱱᱮᱢᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱡᱩᱱᱩᱠ ᱪᱷᱚᱛᱚᱣᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱚᱛᱚ ᱦᱩᱞᱤᱥᱤ ᱟᱯᱚ ᱱᱚᱜ ᱨᱚᱜᱚᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱚ ᱥᱤᱡᱚ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱤᱫᱟᱝ ᱠᱮ ᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱪᱤᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱤ ᱠᱮ ᱞᱮ ᱥᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱪᱤ ᱯᱮᱥᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱦᱤᱜᱟ
2: ᱫᱟ ᱫᱟ ᱫᱟ
0: ᱡᱮ ᱱᱩᱭᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱥᱤ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱥᱟᱞ ᱯᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱤ ᱥᱤ
2: ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱛᱟ ᱞᱟᱥᱟᱞ ᱪᱮ ᱱᱤᱛᱟᱞ ᱞᱚ ᱥᱮᱱᱴᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟᱥ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱱᱟᱯᱪᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟᱥ ᱨᱮ
0: ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱟ ᱪᱤᱭᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭ ᱤᱠᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱡᱟ ᱜᱚᱢᱚᱛ ᱵᱤᱪᱮᱥ